0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी लादे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: बॉलीवुड के लिए फ्राइडे होता है उनका जजमेंट डे. हर फ्राइडे बॉलीवुड को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक नया पोस्टर, एक नया ट्रेलर, एक नया गाना, एक नई कहानी. लेकिन हर साल सिर्फ कुछ ही चीजें वक्त की कसौटी पर टिकती हैं, बाकी सब कंटेंट बनकर रह जाती हैं. और मुझे पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है. हमारे पास आज सब कुछ ज्यादा है. We've got bigger budgets, we've got bigger marketing, we've got bigger platforms. और फिर भी क्या हम वैसे कल्चरल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो 10, 20, 25 साल बाद भी याद रह जाएंगे, या हम सिर्फ अगले फ्राइडे तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? आज के काउंटडाउन में इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं. म्यूजिक भी होगा, मेमोरीज भी होंगी, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब शायद बॉलीवुड को खुद ढूंढने पड़ेंगे. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन. एंड इस एपिसोड का पहला गाना है उस फिल्म से जिसे तारीफ तो मिल रही है पर बॉक्स ऑफिस की मोहर नहीं. मैं वापस आऊंगा बाय इम्तियाज अली एंड गाना नंबर 20 पर है इश्क मस्ताना, विच रियूनाइट्स मोहित चौहान विद एआर रहमान एंड इरशाद कामिल फॉर एन इम्तियाज अली फिल्म. ये तो हमने पहले भी देखा है.
0: नंबर 20.

वेलकम टू द जंगल। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो एक बात समझ आ गई होगी, आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, अटेंशन है। हर प्लेटफॉर्म आपको बुला रहा है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, गेमिंग, सब आपके वक्त के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता था कि फिल्म्स अब और बेहतर हो जाएंगी और हिम्मत वाली होंगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है, कई बार लगता है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस हफ्ते लगान के 25 साल पूरे हो गए हैं और उसने मुझे एक बात याद दिला दी, 2001 सिर्फ एक अच्छा साल नहीं था, 2001 एक स्टेटमेंट था। लगान तो आई थी, लेकिन उसी दिन उसके साथ आई एक और फिल्म।

एक फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तानी कहानियां ऑस्कर तक पहुंच सकती हैं। एक फिल्म ने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जमा की जो आज भी रिकॉर्ड बुक्स में जिंदा है। और एक फिल्म जिसने बॉलीवुड को ग्लोबल फैमिली इवेंट बना दिया। सोचिए, तीन फिल्में, तीन अलग अलग फिल्म मेकर्स, तीन अलग अलग ऑडियंसेस और तीन अलग अलग विजन्स, और तीनों एक ही साल में आई। अब सवाल ये है, जब 2001 में ये मुमकिन था तो 2026 में हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा स्क्रीन्स है, ज्यादा मार्केटिंग है, ज्यादा डेटा है, लेकिन क्या हमारे पास उतनी ही कन्विक्शन है? क्योंकि क्लासिक्स बजट से नहीं बनते। क्लासिक्स तो बनते हैं जब फिल्म मेकर्स ट्रेंड फॉलो करना छोड़कर ट्रेंड क्रिएट करते हैं। और शायद इसी भागदौड़ में कुछ फिल्में आती हैं और कुछ नोटिस हुए बिना निकल जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। उसका एक गाना मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू कर रहा है। इट्स अ फील गुड हैप्पी गो लकी सॉन्ग सॉन्ग बाय श्रेया घोषाल। गाना नंबर 18 है नब्ज नब्ज। नंबर 18।

यार कभी कभी कोई गाना सुनते वक्त एक अजीब सी डेजा वू वाली फीलिंग आ जाती है। मस्कारा के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एआर रहमान, इरशाद कामिल, इम्तियाज अली, ये तीनों नाम जब साथ आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस वैसे ही स्काई हाई हो जाते हैं। और फिर जब मैंने ये गाना मस्कारा दोबारा सुना, मेरे दिमाग में एक और गाना अपने आप लूप पे चलने लगा। पता नहीं आपको भी लगता है कि नहीं, लेकिन दोनों गानों में एक ही तरह की शरारत है, एक ही तरह की बेपरवाही, जैसे सुर सीधा चलने से इनकार कर रहे हो। लेकिन फिर ये चार्ट्स आपको याद दिला देते हैं कि म्यूजिक की दुनिया में रूल्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इस हफ्ते नंबर 15 पर है धुरंधर का मैं और तू, जैस्मिन सैंडलर्स का एटीट्यूड, वो रैप वाली एनर्जी और एक ऐसा सोनिक पंच जो किसी और गाने जैसा बिल्कुल नहीं लगता। नंबर 15

एंड देन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मिर्ची टॉप 20 में इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक ऐसा गाना जो हिंदी फिल्म काउंटडाउन में सुनने की शायद किसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी, क्योंकि भोजपुरी फ्लेवर है भैया, देसी स्वैगर है, और सबसे बड़ी बात एक भी डबल मीनिंग वाली लाइन नहीं है, सिर्फ मस्ती है, सिर्फ रिदम है, और एक हुक है जो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता। कैसे बनी हाय दैया, कैसे बनी कलौरी बिना चटनी, कैसे बनी धमाल 4 का ये गाना, एंड यस इस फ्रेंचाइज का ये चौथा पार्ट है। वेल इट्स गॉट नील कमल सिंह, ममता शर्मा सिंह दिस सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू करते हुए नंबर 14 पर, कलौरी बिना चटनी कैसे बनी नंबर

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 13।

कभी कभी लगता है कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी समस्या फेलियर नहीं है, कामयाबी है, सक्सेस। क्योंकि जब कोई फॉर्मूला काम कर जाता है ना, हम उसे सेलिब्रेट कम करते हैं, रिपीट ज्यादा करते हैं। शायद वरुण धवन की कहानी थोड़ी ऐसी ही है। अ डेब्यू विच वॉज एज स्मैशिंग एज स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एंड देन उसके बाद मैं तेरा हीरो, हम टी शर्मा की दुल्हनिया, जुड़वा 2, एक के बाद एक हिट्स। लेकिन फिर एक वक्त आया जब ऑडियंस बदल गई। I think it was around 2017 or maybe 2018. सब बदल गया, मगर फॉर्मूला वही रह गया। मुझे बात हमेशा इंट्रीगिंग लगती है। वरुण धवन को एक्टर किन फिल्मों ने साबित किया? एक सुजीत सरकार की अक्टूबर थी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दूसरी फिल्म थी ये।

मतलब जिस एक्टर को हम सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो अपने ही बनाए हुए कंफर्ट जोन से बाहर मिलता है। हर स्टार के करियर में एक मोड़ आता है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि आप हिट दे सकते हैं कि नहीं, सवाल ये होता है कि आप खुद को सरप्राइज कर सकते हैं कि नहीं। और शायद इसलिए मुझे अगला गाना बेहद पसंद है, क्योंकि हर अच्छी चीज तुरंत पॉपुलर नहीं होती, कभी कभी उसे वक्त देना होता है, कभी कभी उसे लोग बाद में डिस्कवर करते हैं। बिल्कुल मैं वापस आऊंगा की तरह फिल्म को उतना प्यार नहीं मिल रहा जितना उसे मिलना चाहिए, लेकिन जिन्होंने देखी है वो उसे छोड़ नहीं पा रहे। नंबर 12 पे दिस इज वो नहीं एन ARR एंड इरशाद कामिल कोलैब। नंबर 12

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 11

ये गाना मुझे किसी प्लेलिस्ट ने नहीं दिया, किसी एल्गोरिथम ने रेकमेंड तक नहीं किया। मैं जब धुरंधर देख रहा था, ये गाना अचानक मेरी जिंदगी में आ गया। एंड तब से मुझे एक बात बहुत बार रियलाइज हुई है, शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेलीविजन इज डेड, प्रॉब्लम ये है कि सरप्राइज एलिमेंट मर गया है। एक जमाना था जब हम चैनल्स फ्लिप करते रहते थे, 9XM, MTV, Zoom, B4U Music, और बीच में अचानक कोई गाना आ जाता था। आप उसे ढूंढ नहीं रहे होते थे, वो आपको ढूंढ लेता था। कभी कभी तो उस गाने का नाम तक नहीं पता होता था, लेकिन अगले दिन वो गाना दिमाग में घर बना चुका होता था। आज हमारे पास पहले से ज्यादा म्यूजिक है, we've got infinite playlists, infinite recommendations, infinite content, लेकिन शायद कम डिस्कवरीज हो रही हैं, क्योंकि आज हर प्लेटफॉर्म आपको वही दिखाता है जो उसे लगता है कि आपको पसंद आएगा, और इसी चक्कर में वो चीज जो आपको पसंद आ सकती थी कभी मिलती ही नहीं। पहले हम गाने ढूंढते नहीं थे, गाने हमें ढूंढ लेते थे। शायद इसलिए कुछ गाने वक्त से बाहर निकल जाते हैं, उन्हें ट्रेंड्स की जरूरत नहीं पड़ती, एल्गोरिथम्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस दिल तक पहुंच ही जाते हैं। मिथुन द कंपोजर कहते हैं कि उनकी पूरी डिस्कोग्राफी में अगर एक गाना है जो उनके दिल के बेहद करीब है तो वो यही है। रूप कुमार राठौड़ जी की आवाज में एक ऐसा गाना जो हर दौर में नया लगता है। दिस इज माई पिक ऑफ द वीक, इट्स फ्रॉम अनवर, दिस इज मौला मेरे मौला।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

सर्टिफाइड बैंगर बॉस, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और मुझे लगता है कि कॉकटेल 2 क्वाइटली इस साल की सबसे एक्साइटिंग साउंडट्रैक्स में से एक बन रही है। पहले आया जब तलक, देन यू हैव द सॉफ्ट तुझको, एंड फिर आया माशूका, और अब आ गया वल्लाह। चार गाने, चार अलग अलग मूड्स, लेकिन एक ही बात कॉमन, पर्सनैलिटी। Now Hardy Sandhu इस गाने में गाते कम हैं, स्टाइल ज्यादा छोड़कर जाते हैं, और प्रीतम दा ने जो ग्रूव बनाई है वो सीधा स्पीकर से निकलकर हमारे खून में घुस जाती है। ये उन गानों में से है दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। लेकिन गाने और फिल्मों में एक फर्क होता है। एक फिल्म का साउंडट्रैक आप इंस्टिंक्ट से बना सकते हो, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट से जीतती है या फिर हारती है। और इसलिए मुझे शाहिद कपूर की कही एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। शाहिद ने हाल ही में कहा कि अब वो स्क्रिप्ट्स सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर, अपने सिक्स सेंस पर डिसाइड नहीं कर रहे। नरेशन के वक्त तीन और लोग उनके साथ रूम में बैठे होते हैं, यानी कि तीन और ओपिनियंस, तीन और पर्सपेक्टिव्स। और शायद ही कमजोरी नहीं है, शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो हमेशा अपनी बात लोगों से मनवाते हैं या खुद मानते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार दुनिया बदल रही है, और बॉलीवुड की ऑडियंस वो तो हर रोज बदल रही है। इसी सवाल से वरुण धवन भी जूझ रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को ऑडियंस ने कभी सर आंखों पर बिठाया था, लेकिन क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और चार्ट्स दोनों फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 6 से फिसल कर नंबर 9 पर आ गया है ये गाना, व्याह करवा दो जी, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

0: Energy. It's hot. Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 8.

मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कद फॉर यू। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिख कर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। नंबर 7।

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है। एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21, जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना यह है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है, स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 5.

0: अजीब बात है ना, कुछ गाने हिट होते हैं, कुछ सुपर हिट होते हैं और कुछ एवरग्रीन हो जाते हैं, और फिर बहुत ही कम गाने होते हैं जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर लगान ही लगान थी। 25 साल, इंटरव्यू, स्टोरी, स्क्रीनिंग्स, और हम सब फिर से उस दुनिया में लौट गए जहां एक छोटा सा गांव पूरी हुकूमत को चैलेंज कर रहा था। लेकिन जब भी लगान की बात होती है तो मेरा दिमाग फिल्म पर नहीं जाता, मेरा दिमाग स्टेडियम पर जाता है, क्योंकि मेरी जिंदगी का काफी वक्त क्रिकेट ग्राउंड्स में गुजरता है। और मैंने एक चीज हर बार महसूस की है, जब मैच बड़ा हो, जब प्रेशर ज्यादा हो, जब लगता हो कि अब दिल सीधा गले में आ जाएगा, तो भीड़ में कहीं ना कहीं से एक आवाज उठती है, कोई हमसे जीत ना पावे चले चलो। और अचानक हजारों लोग एक हो जाते हैं। और सोचिए, ये गाना 25 साल पुराना है, इट्स 25 इयर्स ओल्ड, फिर भी पुराना नहीं लगता। यू मस्ट बी थिंकिंग, आखिर ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि ये जीत के बारे में नहीं है, ये हिम्मत के बारे में है, ये उस पल के बारे में है जो दुनिया कहती है कि यार नहीं होगा, लेकिन आप कहते हैं एक बार और कोशिश करके देखते हैं। थैंक गॉड कि जावेद साहब ने आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर के एक सजेशन को खारिज कर दिया।
1: द ट्यून वाज इस ट्यून में आपको जो लिखना लिखे नशा नशा नहीं रहेगा,
2: नशा नशा चेंज नहीं होगा। हम लोग सब नशे में आ गए थे।
3: किसान बारिश हो नहीं रही है, किसान भूखे मर रहे हैं, उन पे 3 बरस का लगान चढ़ा हुआ है, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझसे कह रहे हैं लिखो नशा नशा नशा नशा। भाई ये कैसे हो सकता है?
4: चले चलो, मैंने लिखा। अरे नहीं, वो देखिए नशा नशा में क्या फ्लो था, मैं थोड़े दिनों तक ये गाइए इसमें भी फ्लो आ जाएगा।
0: और बस नशा नशा चला गया, जादू रह गया। 25 साल बाद भी हर स्टेडियम में, हर जनरेशन के साथ, हर नए सपने के साथ, लगान से चले चलो। Top 20 Rewind.

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए, गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है, वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। द कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और पूरी भीड़ चुपचाप उस बंदे को सुन रही होती है। इट्स ए टिपिकल इटालियन सेटिंग और राघव ने माशुका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स हैं, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स हैं, है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची रॉ 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोककर, हर नई एंट्री को देखकर बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते। नंबर 1।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिलकर देखेंगे इनमें से कितनी चीजें वाकई टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Michi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे

फैन ऑफिशियली ऑन हो चुका है। दिमाग को एयरप्लेन मोड पे डालो, स्पीकर्स को फुल वॉल्यूम पे, और जो पेंडिंग स्ट्रेस है उसको कल पे डाल दो यार। ये है क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। जहाँ फ्रेंड सर्कल हो या स्पेशल सर्कल, टुनाइट नोबडी इज सिटिंग। डांस फ्लोर पे बस एक रूल है, ऑकवर्ड मत हो, बस मूव करो। और अगर स्टेप नहीं आता, कॉन्फिडेंस से करो यार, लोग बोलेंगे ट्रेंड चल रहा है। डांस बसंती।

टारगेट सिंपल है, एंट्री नॉर्मल और एग्जिट लेजेंडरी। आप शरारा पहने हो पर निकलो मोरनी बनके। डीजे में चर्ट मिर्ची और योग्यता विद यू ऑन क्लब।

0: पीपल क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंते का एक साथ और आज रात शाइन करने का लाइसेंस सबको मिला हुआ है इफ यू आर लिसनिंग टू क्लब मिर्ची सो वी आर ऑल बॉर्न टू शाइन
1: वो तम चाके रखना जिन्हें भंगड़ा पाना पंजाबी आ गया कुचेला।

डांस इतना करो कि मंडे को नीज कंप्लेन करे. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका विथ यू ऑन क्लब मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. ए आर रहमान इन द

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

और सुनो, पार्टी हार्ड करो लेकिन ड्रिंक करके ड्राइव मत करना। कैब बुलाओ, दोस्त को बुलाओ, हेडलाइंस मत बनाओ यार। आज की रात सेफ्टी इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो के का।

0: Mirchi. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

अब हो जाता है कैसे प्यार ये किसको पता। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका आपके साथ डांस फ्लोर पे केमिस्ट्री फ्री मिल जाएगी आपको।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: अभी टाइम है सनी सनी करने का खुद को. यू हैव टू राइज अप टू द ओकेशन. डजंट फील इम्पॉसिबल व्हेन डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका ऑन क्लब मिर्ची.
1: My dream is to fly over that rainbow so high.

0: खुली किसकी आखिर है बाहें, मुझको पहचान लो।
1: वीकेंड पे कॉन्फिडेंस का लेवल ही लीगल हो जाता है। वेलकम बैक पार्टी पीपल, मैं हूँ डॉन डीजे रिचर्ड

मैं जिंदगी की बाजी लगा के मौत से खेलता हूँ जुआ, ना मुझको गम है ना मुझको परवाह।

Girl, them skill are tip. Thunderpaw.

waking, that's a

0: आखिर में पाए मुझको पहचान लो
1: वीकेंड पे कॉन्फिडेंस का लेवल ही लीगल हो जाता है। वेलकम बैक पार्टी पीपल, मैं हूँ डॉन डीजे

मैं जिंदगी की बाजी लगा के मौत से खेलता हूँ जुआ। ना मुझको गम है ना मुझको परवाह, कौन मेरा दुश्मन हुआ। दुश्मन जो तेरा हो कहता नहीं दुनिया में बहुत ही खतर।

0: मिक्सेस तड़का लगा के
1: Thunderball.

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

पेस्ट्री सैंडविच हैमबर्गर या बटर रोल सबसे मैं हूँ टेस्टी सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से दिल का शिकार कर हनी जरा

0: Energy. It's hot.
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर

मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी पकड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिका दिक्कड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
2: दिकीरो दिकीरो दिकीरो।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain the Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारी कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है, एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
0: माइथोलॉजी का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला, क्या था? बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग। यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न, यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम यू नो वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं। बट यू नो एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ, यू नो, कल भी आज भी सब समय इट ऑल टाइम्स देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एंड वी आर ऑल इनसिक्योर। कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर। और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है, और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है। ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे, एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड, बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल। वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था। सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान, एंड वी ऑलवेज टेंड टू सेपरेट इट। हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता, और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन गो टू द जिम एंड बी यू नो स्ट्रांग एंड डू एक्सरसाइज एंड बी गुड इन स्पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज, एंड यू कैन बी अ स्मार्ट गाय, यू कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस। यू नो हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को, और आई थिंक ये आइडिया है। मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलिवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान हैं, वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस, और हमें मनुष्य बनना है। यू नो ही इज अ वानर, वन का नर, मीन्स सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन, लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। आर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान। ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे। वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी के स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस। तो स्टे ट्यून्ड।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माई फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल, उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं, एक बंदर कौन है। और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है। और फिर वो कहता है,

0: है बंदर बहुत ही बहुत डेंजरस शब्द बोलता है कि कहता है कि मैं राम का दूत हूँ, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम, तो अगर मैं दूत हूँ तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, आप मुझे बांध के लाए हो यहाँ पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूँ। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है? एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल चल अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूँ, यू शुड ट्रीट मी नाइसली, और अगर तुम यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है, मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है कि भैया तेरी औकात क्या है। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है लेकिन सबको समझ में आता है, बताने से पता चलता है कि रावण हमारी जिंदगी में बहुत रावण होते हैं, हम भी रावण होते हैं, सबको हम चाहते हैं कि सब हमारी नीचे बैठे रहें, हम लोगों को वी जज पीपल कि कैसे लोग होने चाहिए, बट सामने वाला हनुमान हो सकता है और वो हमें औकात दिखा देगा बहुत ही शांति से। और ये कहानियों में से ऐसी छोटी छोटी ज्ञान मिलती है, हमारा जो संस्कृति है, भारत धर्म है, हमारा जो कल्चर है वो कहानियों के माध्यम से आता है, जैसे ये एक छोटी सी एपिसोड रामायण की हनुमान जी और रावण के बीच में। एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची, तो स्टे ट्यून्ड।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
0: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
0: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गांव गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
1: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में इसे मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसके लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक्ड टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफ कोर्स देयर आर स्टोरीज कि उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं की तरफ, फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है। That is the purpose. All
3: right. Thank you so much for the answer. Thank you.
1: Welcome, Akshata.
3: Yeah.
1: तो अक्षता का क्वेश्चन वॉज अबाउट सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है ये ट्रेडिशनल कलर है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्मली जो मेल गॉड्स होते हैं उनको लाल रंग वेरी रेयरली दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
2: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: द देवदत्त पटनायक शो
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं। तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू। नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे। लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं, और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं, और एक ही सर वानर का रूप लेता है। बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है, और एक गरुड़ का होता है। पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है। अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपियर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है, और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम। तो स्टोरी है, हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक। इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं, और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है। वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं। ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना। सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन, जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं। ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं। आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर, एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस। So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
3: हमें ही नहीं हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। कब और क्यों बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्च। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीजें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं, तो एक स्टोरी है यू नो विच इज यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुद्र दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था हमें इतना योजन, योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था हमें 10 योजन जा सकते हो, कोई 50 योजन, तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है। सो इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम। एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं, एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है, एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काइज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने? कीप लिसनिंग।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, शाम कन्हाई ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर। नंदराय आदेश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो,
1: ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे, सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi,
3: मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: जी,
3: तो हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे, जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात, शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस जाती है, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माय सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdattonmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show.
3: The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: कल रात ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो आई फेल्ट कि यार सारा कुछ तो गड़बड़ है यार, ये बिना बात की नींद कैसे उड़ गई। बस फिर क्या, गूगल बाबा से पूछ लिया, और आप तो जानते हो एक बार गूगल बाबा से पूछा मतलब ठाकुर तो गयो।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. बस क्या यार, गूगल पर जो लिखा था ना वो पढ़कर तो मेरी नींद और ही उड़ गई। फिर मैंने वही नुस्खा अपनाया जिससे बचपन में मुझे अच्छी नींद आया करती थी। जरा सा नारियल तेल लगाया, चंपी की, और फिर जो बढ़िया नींद आई है, आ हा हा हा हा हा। अगर ये सवाल मैं आपसे भी करूं कि आप अपने बचपन के नींद लाने का कौन सा नुस्खा फॉलो करते हो, तो डीएम करो ना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। सारा जमाना
1: सारा का दीवाना। मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हम बॉलीवुड के भक्त लोग अगर MBBS की डिग्री देखेंगे ना तो बोलेंगे हाँ नाइस नाइस, लेकिन अगर मुन्ना भाई MBBS की CD देखेंगे ना तो बोलेंगे अबे ये कहाँ से मिली।
1: मिर्ची VCR।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मुन्ना भाई वो फिल्म है जिसने जाने कितनों के करियर में फिर से चिंगारी जला दी, स्टार्टिंग विद संजू बाबा, जो इस फिल्म तक गैंगस्टर टाइप रोल्स ही प्ले किया करते थे। उनकी एक इमेज बन गई थी यार, लेकिन इस फिल्म के साथ उनकी इमेज की काया पलट गई। एंड देन कमिंग टू अरशद वारसी, जिनको MBBS से पहले 3 सालों तक कोई फिल्म नहीं मिली थी, और फिर इस मूवी के बाद कॉमिक रोल्स की ऐसी लाइन लगी उनकी लाइफ में कि पूछो मत। और बोमन ईरानी, इस फिल्म के बाद उनका करियर भी गॉट नोटिस्ड, एंड इनफैक्ट राजकुमार हिरानी की भी ये पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। और किस्मत का खेल देखो, इस फिल्म में विद्धू विनोद चोपड़ा ने पहले संजय दत्त को जहीर का रोल ऑफर किया था, द सेम रोल जो फिर जिमी शेरगिल ने प्ले किया। लेकिन कैसे चीजें बदली, वही तो बात आपको आगे बताऊंगी। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: संजय दत्त को मुन्ना भाई MBBS के लिए जहीर का रोल ऑफर किया गया था और मुन्ना भाई का रोल ऑफर किया गया था शाहरुख खान को।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। लेकिन किस्मत का खेल कुछ यूं था कि शाहरुख खान की नेक की सर्जरी के चलते ही हैड टू से अ नो टू द फिल्म, एंड देन विद्यू विनोद चोपड़ा ने संजू बाबा को लीड रोल के लिए मूवी ऑफर की। हालांकि संजय दत्त वाज एप्रिहेंसिव टू डू द मूवी सिंस उन्हें उस टाइम पर डॉन और गैंगस्टर के रोल्स ही ऑफर हो रहे थे, बट सुनील दत्त साहब आस्क्ड हिम टू डू द फिल्म एंड ही सेड अ यस। और किस्मत का खेल देखो, इट वाज इन द फर्स्ट टाइम संजय दत्त वाज प्लेइंग द रोल ऑफ मुन्ना भाई। इससे पहले भी उन्होंने क्रोध, हम किसी से कम नहीं इन सारी मूवीज में मुन्ना भाई नाम के ही किरदार निभाए थे। फर्क यहाँ इतना था कि उसी नाम मुन्ना भाई के पीछे MBBS लग गया, तो स्टोरी की काया ही पलट गई यार। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि एजुकेशन कैन डू वंडर्स टू आवर लाइव्स। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: खूब जमता था रंग जब मिल बैठते थे तीन यार, राजा, रैंचो और हमारा टेलीविजन सेट।
2: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजा और रैंचो एक ऐसी अद्भुत कहानी थी, एक ऐसा शो था जहां एक बंदर रैंचो और डिटेक्टिव राजा प्लेड बाय वेद थापड़, इनकी जोड़ी मिलकर क्राइम केसेस सॉल्व किया करते थे, वो केसेस जो पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाती थी। और क्या इंटरेस्ट लेकर हम देखा करते थे यार इस शो को ऑन डीडी मेट्रो। आई यूज्ड टू बी डन विद माय होमवर्क ऑन टाइम सो दैट टीवी देखने को मिले और राजा और रैंचो मिस ना हो जाए। एंड एट दैट टाइम एक्चुअली एनिमल वीडियोस और मंकीज के मैनरिज्म्स ऑब्जर्व करती हुई रील्स देखने को नहीं मिलती थी ना, तो एक बंदर एक इंसान के साथ दोस्ती का रिश्ता कैसे निभाता है ये देखने में ना मुझे बहुत ही मजा आया करता था। इट यूज टू बी वेरी एंटरटेनिंग, मोर सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देयर वाज अ बंदर एक्टिंग इन द शो। एंड शो हालांकि राजा और रैंचो पर था, लेकिन मेरे लिए हीरो तो रैंचो था, बॉस, हु वाज एक्चुअली नोन एज द वंडर मंकी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बिस्तर बंद, ये याद है आपको कि ऐसे भी कोई चीज हुआ करती थी हमारी लाइफ में कभी?
0: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और 90s में सर्दियों में इंडियन रेलवे से ट्रैवल करने का मतलब पूरे जिंग बैंग के साथ ट्रैवल करना, कंबल, तकिया, चादर, पतली पतली रजाइयां, और ये सब बंद होता था एक आर्मी ग्रीन कलर के कैनवस वाले कवर में, जिसे हम बिस्तर बंद कहा करते थे। ये सामान ना सबके ट्रैवल का हिस्सा हुआ करता था। आई रिमेम्बर सर्दियों में जब हम नानी के घर जाते थे ना, तो हमारे रूम के एक कोने में इसे भी जगह देनी पड़ती थी, और ये कमरे में बीन बैग का काम किया करता था। कट टू आज का ट्रैवल, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वी सी पीपल ट्रैवलिंग कम से कम सामान के साथ, एकदम हैसल फ्री। आज का रेलवे तो इतनी तरक्की कर चुका है कि खाना हो या बिस्तर, हर चीज मिल जाएगी आपको ट्रेन के अंदर, यार घर से लेकर आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यार सर्दियों में स्लीपर में ट्रैवल करना बड़ा बर्फीला हुआ करता था, नहीं? स्पेशली फॉर दोस जो खिड़की की सीट पर सोते थे। भाई, शटर के नीचे एक हल्की सी लाइन जहाँ से हवा घुस घुस कर आती थी, ये वही थी जिससे एक ही रात में हमारी नाक जम जाती थी। लेकिन एक बात तो है यार, आज भले ही हम ट्रेन्स और फ्लाइट्स में पहले से बहुत ही लाइट ट्रैवल करते हैं, लेकिन इमोशनल बैगेज कुछ ज्यादा कैरी नहीं कर लेते हैं। जरा उसे भी तो कम करें। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: क्रिमिनल मूवी का ये गाना जब टेलीविजन पर आता था ना, तो हमारे बड़े कहते थे बच्चा पार्टी आंखें बंद कर लो, क्योंकि तब चैनल चेंज करने का तो ऑप्शन ही नहीं हुआ करता था ना। देयर वाज ओनली DD1, और जब काउंटडाउन शो देख रही है पूरी की पूरी फैमिली, तो बच्चे तो वहां मौजूद होंगे ही होंगे।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Well, this गाना was sizzling hot अपने टाइम में, लेकिन जितना ये वीडियो के हिसाब से sizzling hot था, उतना ही प्यारा ये सुनने में भी है।

रोंगटे तो आज भी खड़े हो जाते हैं यार इस गाने की म्यूजिक सुन के। लेकिन इस गाने की ये जो सिग्नेचर म्यूजिक है, जो कि इस गाने के बाद हमें कहीं सुनाई नहीं दी और ऐसा कोई गाना ऐसा लगा ही नहीं कि फिर बना होगा, एक्चुअली ये गाना ऑलरेडी पहले बन चुका था। यस, क्योंकि ये गाने की म्यूजिक इज एक्चुअली अ कॉपी फ्रॉम एन इंग्लिश बैंड का गाना जिसका की नाम था एज ऑफ लोनलीनेस। ठीक

और यहीं से हमारे फेवरेट गाने को म्यूजिक मिली थी। वेल, अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई मूवी या फिर कोई गाना कहीं से उठाया गया है और कट कॉपी पेस्ट किया गया है, तो DM करिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब मोहरा बन रही थी तो अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल कहा था विच डिडंट गो वेल विद सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऑफ कोर्स जो उन्होंने कहा वो झकास तो नहीं था। वेल, ही टॉन्टेड बोथ द एक्टर्स बिकॉज ही सेड कि द डायरेक्टर राजीव राय को हुआ क्या है कि वो जैकी श्रॉफ और सनी देओल जैसे एक्टर्स को छोड़कर 50% एक्टर्स को लेकर बना रहे हैं फिल्म। एंड बाय दिस ही मेंट कि सुनील और अक्षय न्यू कमर्स हैं जिन्हें एक्टिंग करनी नहीं आती, सो व्हाई चूज देम। एंड यस, दे वर न्यू कमर्स एंड नॉट नोन फेसेस। और ये बात जब इन तक पहुंची तो सुनील शेट्टी को अनिल कपूर की ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि ही डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ थिंग फ्रॉम अ वेटरन एक्टर लाइक अनिल कपूर। फनी हाँ, जहां झकास बोलना था वहां बकवास बोल दिया। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन विद लाइफ। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: डियर चॉक एंड डस्टर,
4: यादों को चिट्ठी।
3: कभी तो तुम क्लासरूम चमकाया करते थे, तो कभी तुम टीचर का मूड ही चमका दिया करते थे। कहाँ चले गए यार वो दिन जब काले ब्लैक बोर्ड पर तुम्हारा जादू चला करता था। जब चौक ब्लैक बोर्ड से मिला करती थी ना, तो एक अलग ही म्यूजिक बना करता था, और जब डस्टर चौक का लिखा हुआ मिटा रहा होता था तो सुर बदल जाया करते थे, लेकिन म्यूजिक जरूर हुआ करता था दोनों की उस लैंग्वेज में। वो कोई सिंपल आवाज नहीं थी, बल्कि हमारी पढ़ाई की बैकग्राउंड म्यूजिक थी बॉस। हर मंडे को हमारी क्लास में चौक का एक नया डब्बा आया करता था नए लुक के साथ, और सैटरडे तक वो थक हार के डब्बा खाली हो जाया करता था। और डस्टर भाई साहब, तुम तो पूरे हफ्ते धूल में लत-पत होकर ब्लैक बोर्ड को ही चमकाते रहते थे, जैसे कोई दोस्त हो जो हमेशा साथ निभाए चले जा रहा है, चाहे सिचुएशन कितनी भी धूल भरी क्यों ना हो। याद है जब टीचर्स गुस्से में आते थे और चौक इतनी जोर से बोर्ड पर मारते थे कि टक की आवाज क्लास की आखिरी बेंच तक सुनाई देती थी, और डस्टर का उड़ता हुआ कमबैक सीधे खिड़की के पास बैठे लड़कों के ऊपर। हालांकि फिर हम मासूमों को पता लगा कि यार इससे तो चोट भी लग सकती है, ये तो गलत है। बट भाई जब क्लास में तुम्हारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था ना मिड वीक के अंदर ही, तो क्लास मॉनिटर को भेजा जाता था और वो एक नया डब्बा लाने के लिए न जाने कहाँ जाया करता था। फिर मैम उस डब्बे को क्लास की अलमारी में सेफली रख दिया करती थी। तुम्हें पता है आज तक मुझे नहीं पता है कि क्लास मॉनिटर को तुम्हारे डब्बे के लिए कहाँ जाना पड़ता था, क्योंकि मैं तो कभी क्लास मॉनिटर बनी ही नहीं। कभी तुम पर हम अपने ख्वाब लिखा करते थे, अपनी ड्राइंग्स बनाया करते थे, लोगों को चढ़ाया करते थे, टीचर्स के कार्टून्स बनाया करते थे, और आजकल स्मार्ट बोर्ड पे उंगलियां चलती है बॉस। आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, स्मार्ट बोर्ड, मार्कर, प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें आ गई हैं दुनिया में। पर सच बताओ वो मजा कहाँ यार जो तुम्हारे साथ था। चौक के पाउडर से भरे हुए हाथ और डस्टर से निकली धूल में लिपटा हुआ वो ज्ञान आज भी दिल को सुकून देता है। लेकिन अब तुम ना हमारी जोड़ी के एग्जाम्पल्स में काफी काम और याद आते हो, क्योंकि अब हम तुम्हारी मिसाल दिया करते फॉर अ हिट जोड़ी। जब किसी जोड़ी की केमिस्ट्री की बात करनी हो ना, तो जुबान पर आता है बिल्कुल चौक और डस्टर की जोड़ी है बॉस। देखा तुम्हारा इम्पैक्ट हम पर कितना था, इतना कि चौक तुम हमारे लिए सिर्फ धूल नहीं थी, और डस्टर तुम सिर्फ किए कराए पर फिरने वाले डस्टर नहीं थे। तुम्हारा रिश्ता उन स्कूल डेज से ही हमसे काफी गहरा था, है और हमेशा रहेगा। तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट जो आज भी अगर कहीं किसी क्लासरूम में चली जाती है और ब्लैक बोर्ड देख लेती है ना, तो मुस्कुरा देती है। तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: उदित नारायण की आवाज में रंगीला मूवी से दिस गाना इज कैसेट के साइड बी का दूसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: ये गाना कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन है प्यार की मोहब्बत की बात लेकिन इन अ टपोरी फॉर्मेट। एंड ऑफ कोर्स इस गाने में जो पिक्चराइजेशन है उसने टपोरी फॉर्मेट को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है। बट ये जो गाना है ना इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल। ओ मेरे भाई इसका कोई हल नहीं है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है कि परत दर परत आपको हल जो है वो अपने आप या तो मिल जाएंगे या हो सकता है कि आप हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहे इस चीज को लेकर। एंड दिस गाना इज अबाउट द कश्मकश जो एक बंदे के दिल में होती है। बंदा सोच रहा है कि यार रोज हम यही सोच रहा होता है कि आज हमको अगर वो कहीं मिल जाए ना तो ऐसा बोलेगा साला वैसा बोलेगा, खुल्लम खुल्ला उस पे दिल का राज हम खोलेगा। लेकिन टपोरी फॉर्मेट में आगे की जो बात कही गई है ना वो टपोरी तो है लेकिन खूबसूरत बड़ी है कि वो सामने चमकती है सांस ही अटकती है और ये जुबान जाती है फिसल। तो क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। ये यूजुअली वो सवाल है जो एक लड़का अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है कि कैसे बोलूं यार उसको, कैसे अपने प्यार का इजहार करूं, कैसे अपनी रातों की जो उड़ी हुई नींद है करार है उसको मैं काबू में कर पाऊं। नहीं कर सकते स्पेशली तब जब प्यार एक तरफा हो। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि प्यार एक तरफा है या दो तरफा। अच्छा चलो प्यार नहीं तो पसंद ही सही, उसको प्यार में तब्दील कर सकते हैं लेकिन पसंद का पी भी होना चाहिए भले ही प्यार का पी ना हो। क्योंकि जिंदगी की बात करें ना बाबू मुशाय तो ये 90s की कोई फिल्म नहीं है कि हीरो को लड़की पसंद आई तो जाके बोल दिया कि आई लव यू और लड़की हाँ बोल देगी। ऐसा सिर्फ तब की फिल्मों में हुआ करता था। लड़की की भी हामी जरूरी है बॉस, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब लड़कों ने ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया है, जब प्यार एक तरफा है और आपने नहीं पूछा है कि क्या मैं तुम्हें भी पसंद हूँ, तो लड़कों ने मुंह की खाई है और फिर उनके दिल ने दी दुहाई है। तो इस सारे प्रोसीजर से बचने के लिए सबसे पहले ये कन्फर्म करो कि पर से प्यार ना सही लेकिन पर से पसंद है कि नहीं। चलो जी अब जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती भी जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जय कन्हैया लाल की। प्रणाम मेरे भक्तों, मेरे भक्तों नहीं कन्हैया के भक्तों, प्रणाम प्रणाम। भाई लागी माँ जी, बच्चों को यहाँ पर साउंड सिस्टम से दूर रखें,

0: मैं मदन कुमार, फॉलो मी ऑन माई चैनल
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

आई लव यू ऑल। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: खून चूसने आया खून चूसने, कुछ लोगों को देखते ही ये वाला गाना याद आ जाता है यार।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हुआ, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। और इस दुनिया में ना दो तरीके के खून चूसने वाले नजर आते हैं मुझे स्पेसिफिकली। फर्स्ट आर द पीपल जो एक बार में डायनासोर के जैसे आपको हपक लेते हैं, मतलब एक बार में सारा ट्रॉमा आपके ऊपर डालेंगे, आपका खून चूस लेंगे, आपको गुस्सा दिला देंगे, आपका इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है ये बिल्कुल ना लीच जोंक की याद दिला देते हैं। ये आपके स्किन पे इस तरीके से चिपकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, और फिर धीरे धीरे हौले हौले आपका खून चूसते जाते हैं। मतलब आपको अलग अलग जोन में जाके इस तरीके से गुस्सा दिलाएंगे कि आपको लगता है कि और क्या करूं इस इंसान का, बट आप खून का घूंट पी के रह जाते हैं। बट फिर एक दिन इस इंसान पे आपका गुस्से का गुमार फूट जाता है, और फिर ये जैसे लीच को नमक से हटाते हैं ना, वैसे करके हट जाते हैं। एनीवे, कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गई मैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की ये जो प्रोडक्शन हाउस है ना, उसके साथ काम कर सकते हैं बॉलीवुड के भाई जान।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, एंड यस यू हर्ड इट राइट। फिलहाल तो हमारे भाईजान बोले तो सलमान खान जो हैं, वो राज एंड डीके के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्म साइन कर चुके हैं। उसी के साथ ही इज करेंटली शूटिंग फॉर दिस अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म, जिसमें वो नयनतारा के साथ लीड रोल निभाते नजर आएंगे। एंड द मूवी इज बीइंग डायरेक्टेड बाय वामशी पेद्दीपल्ली। एंड नाउ न्यू रिपोर्ट सजेस्ट कि भाई एक मैसिव पीरियड एक्शन ड्रामा के लिए फरहान अख्तर जो है वो बातचीत कर रहे हैं सलमान खान के साथ। इनफैक्ट इनकी काफी सारी मीटिंग्स भी हो चुकी है और सलमान को जो स्क्रिप्ट है वो भी काफी पसंद आया है। तो अब देखते हैं कि ये बात किस लेवल तक जाती है। जैसे ही कुछ सब्सटेंशियल पता चचलेगा आपको जरूर बताऊंगी। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।